नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

0: ही हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चंद्रमुखी दिस से अशी तुझी माजी की जोड़ी गगित की पिछान छान ये।

दिल दूत एक ज्योति चुड़ली ही जन्मा चिनाती ओ दूरदशा शब्दा दुनियावा

0: कॉमनवेल्थ गेम्स की हर खबर, बने रहिए हमारे साथ।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: जब सपनों को मेहनत का साथ मिलता है तो उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं बल्कि निरंतर बेहतर बनने की एक सतत यात्रा है। ये धैर्य, अनुशासन और उस विश्वास का उत्सव है जो हर खिलाड़ी को एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इसी यात्रा में कभी नए कीर्तिमान बनते हैं, कभी नई प्रतिभाएं उभरती हैं और कभी ऐसे क्षण जन्म लेते हैं जिन्हें खेल इतिहास लंबे समय तक याद रखता है। इन्हीं भावना और उपलब्धियों का साक्षी बना हुआ है स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जहां जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों, प्रतिभा और संकल्प की परीक्षा दे रहे हैं। हर दिन नए मुकाबले, नए परिणाम और नई कहानियां इस महाकुंभ को और यादगार बना रहे हैं। भारत के लिए भी प्रतियोगिता का 10वां दिन कई मायनों में विशेष रहा।
3: राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन है। कल बॉक्सिंग और एथलेटिक्स दोनों के अंतिम दिन थे और बॉक्सिंग में करिश्मा ही था कि 14 में से 10 फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाज थे और उन्होंने इतिहास रच दिया, अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन। एथलेटिक्स के अंतिम दिन भारतीय कुल मिलाकर 7 स्पर्धाओं में थे, पदकों की उम्मीद थी और पदक आए भी, और सारे रंगों के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा जूडो में भी भारतीय दमखम दिखा, ट्रैक, साइकिलिंग और बोस में भी भारतीय चुनौती थी। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 10वां दिन और पूरा लेखा जोखा लेकर उपस्थित हैं हम। खेलों का 10वां दिन और भारतीय बॉक्सर्स ने दिखाया 10 का दम। सिलसिले का आगाज किया 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने। सामने स्कॉटलैंड की स्कारलेट सवाना। प्रीति की रिंग कवरेज, फुर्ती और सधे हुए मुक्कों ने सवाना को बाउट से रवाना कर दिया। एक मत से निर्णय प्रीति पवार के पक्ष में रहा 5-0 और दिन की सुनहरी शुरुआत हो गई। बॉक्सिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक।
4: मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एक अच्छा स्टार्ट किया इंडिया के लिए, आज गोल्ड जीता है। सो मेडल मैं सभी इंडियंस को डेडिकेट करूंगी।
3: 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया के पास लंबा अनुभव है, विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। उनके सामने ब्लू कॉर्नर में थी नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्श। जैस्मिन ने अनुभव का पूरा फायदा उठाया, अपना गार्ड हमेशा ऊंचा रखा, जब जरा भी मौका मिला तो जबरदस्त प्रहार कर दिए। जज सर्वसम्मत थे 5-0 का निर्णय उनके पक्ष में सुनाने को। दूसरी बाउट और दिन का दूसरा स्वर्ण पदक। साक्षी चौधरी अलग ही जीवट वाली बॉक्सर हैं। ट्रायल्स में निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। उनके मुक्कों की धार कल सही इंग्लैंड की रूबी व्हाइट ने। पूरा स्टेडियम साक्षी बना साक्षी के सनसनाते प्रहारों का। साक्षी ने 5-0 से बाउट जीती और एक बार फिर स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान की धुन सुनिश्चित कर दी।
5: The Indians are doing very well. From now onwards, we want all the gold medals because we have a strong team and we have trained so hard to win gold medals.
3: भारतीय फौज में एंट्री पाने वाली पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की अरुंधति चौधरी के विरुद्ध थी इंग्लैंड की शांटल रीड 70 किलोग्राम में। लगा वही कहानी एक बार फिर कॉपी पेस्ट की जा रही है जो पहले 4 बार कही जा चुकी थी। 5-0 का निर्णय, भारत की जीत और दिन का 5वां स्वर्ण पदक।
6: गोल्ड मेडलिस्ट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रिप्रेजेंटिंग इंडिया अरुंधति चौधरी।
3: इसके बाद 75 किलोग्राम वर्ग में वर्तमान में भारत की सबसे मशहूर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन रिंग में उतरी। अभी तक बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पिछली सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन ट्री उन पर 20 साबित हुई। दूसरे राउंड के बाद निर्णायकों के दिए अंकों को देखें तो दोनों के बराबर थे, यानी तीसरा राउंड निर्णायक होना था। यहां पर एक बार फिर एमा ने बाजी मार ली। लवलीना 1-4 से मुकाबला हार बैठी और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
6: सिल्वर मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया लवलीना बोरगोहेन।
2: अगर किसी मुकाबले ने आखिरी पल तक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखी तो वो थे सचिन सिवाच। दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत हार का फैसला आखिरी क्षणों तक टला रहा, लेकिन मुकाबले के अंतिम सेकंड में सचिन के एक जोरदार पंच ने विरोधी को लड़खड़ा दिया और उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा। यही पल मुकाबले का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्णिम अभियान में एक और चमकदार यादगार अध्याय जोड़ दिया।
6: The Commonwealth Games champion in the red corner from India, Sachin.
7: अभी तो हमारा मैं एम तो अभी एशियन गेम होने पे ही रहेगा दादा, तो मैं यही चाहूंगा कि आगे अपना इंडिया के खिलाड़ी और अच्छा करें।
2: अगली बारी थी अंकुश पंघाल की। शुरुआती दबाव के बाद अंकुश ने अपने काउंटर पंच और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। उनके प्रतिद्वंदी शीतू पर एक अंक की कटौती भी हुई, जिसका अंकुश ने पूरा फायदा उठाया। आखिरी क्षणों तक उन्होंने बढ़त बनाए रखी और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला जीतकर भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
6: And now Commonwealth Games champion in the red corner for India,
2: मणिपुर के चपल बॉक्सर जादूमणि ने एक तिलिस्म मचा रखा था पिछले दिनों, लेकिन कल 55 किलोग्राम में उनका जादू नहीं चला। कुछ तो वो ऑफ कलर रहे तो कुछ हाथ रहा ऑस्ट्रेलिया के जे डिक्सन का। जादूमणि ने अपनी ओर से संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन वो काफी नहीं था। 0-5 से वो ये बाउट हार बैठे, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनके गले में आया ही।
8: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश हूँ। टफ फाइट था, इस कंपटीशन में जो मेरा गलतियाँ है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा।
2: दिन का आखिरी भारतीय फाइनल था सुपर हैवी वेट वर्ग का, जहाँ सभी की निगाहें नरेंद्र बरवाल पर थी। फाइनल में इंग्लैंड के डोमिनिक थॉमस ने उनकी लय को शुरुआत से ही पढ़ लिया। मुकाबले के आखिरी राउंड में नरेंद्र ने वापसी की पूरी कोशिश की, लगातार हमले भी किए, लेकिन थॉमस हर बार का जवाब देने में सफल रहे। आखिरकार जजों ने सर्वसम्मति से मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिया।
3: इससे पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था।

0: 4 years. Last Commonwealth Games, I lost medal in 2 centimeters. But this time, silver and bronze in India. Hopefully, I'll do again next Commonwealth Games in India.
1: सेल्वा प्रभु थिरुमारन, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। बचपन से ही भागने कूदने का जुनून था उनको। बच्चे की जिद देख पिता ने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी और बेटे ने पिता के त्याग को जाया नहीं होने दिया। 15.52 मीटर अपने 5वें प्रयास में कूदे और भारत के लिए स्पर्धा में 2 पदक पक्के हो गए।
2: I could have jumped a little far, but you know, it's all about I get the medal for the country. I'm so feel proud, you know.
1: अब बात पैरा शॉटपट F57 स्पर्धा की। गजब प्रदर्शन, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक की आस पूरी की इस स्पर्धा ने, और ये आस पूरी की बिहार के लाल सोमन राणा ने। सोमन ने अपना गोला फेंका 13.40 मीटर तक, और एथलेटिक्स में भी भारतीय राष्ट्रगान की धुन पक्की करती। एक माइन विस्फोट में अपना पैर गंवा दिया था सोमन ने, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने संकल्प शक्ति को नहीं गंवाया। पिछले खेलों में वो रजत पदक लेकर आए थे और यहाँ पर सारी कमी दूर कर दी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर।
3: बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना बड़े मंच पर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों पे आए।
1: सोमन के साथी शुभम जुएल, उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपना पूरा दम लगा दिया। हुंकार भरकर जो गोला फेंका वो गया 13.28 मीटर दूर। रजत पदक उनका हुआ। इत्तेफाक है कि दोनों ही फौज में हैं और शुभम ने तो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग भी फौज में आने के बाद बस 3 साल पहले ही शुरू की थी। इन दोनों पैरा एथलीटों को, उनके जज्बे, संकल्प और उनके जीवट को हमारा नमन है। 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह ने रजत पदक पाया था और अब बारी थी 5,000 मीटर की। आखिरी लैप में जोर लगाया, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने वाले 3रे एथलीट बन पाए कांस्य पदक। समय रहा 13:24.35। एक और अनूठी बात, एक ही गेम्स में एथलेटिक्स में 2 पदक कमाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए वो। पैरा 1500 मीटर में रमेश शणमुगम 7वें स्थान पर रहे। बदकिस्मत रही 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका कांस्य पदक से चूक गई, 4थे स्थान पर रही। तो इसी दौड़ में रवीना अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी। वहीं पोल वॉल्ट में देव कुमार मीला और उनके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले कुलदीप कुमार, उनसे उम्मीदें थी। देव 5.30 मीटर की दूरी के ऊपर नहीं जा सके, 4थे स्थान पर रह गए, जबकि कुलदीप 6थे स्थान पर आए। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भी भारतीय टीम कभी भी प्रतियोगिता में दिखी ही नहीं और 6थे स्थान पर आई।
4: जूडो मैट पर कल भारत का अभियान उतार चढ़ाव से भरा रहा। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने बेहतरीन मैट अवेयरनेस और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि अंतिम 4 के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की साया मिडिल्टन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को एपों के जरिए मात दी और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में हर्ष तोकस का सफर भी रोमांच से भरपूर रहा। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज में समोआ के पेनियामिना परसिवल को एपों से हराकर शानदार वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। हालांकि पदक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की केशिन ओची ने उन्हें मात दी और हर्ष का अभियान 4थे स्थान के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में करणजीत सिंह मान क्वार्टर फाइनल में कनाडा के गुयोम गोलिन से हार गए। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में इनुगनबी ताखिलमांबम ने भी भरपूर संघर्ष किया। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के चार्ली थिबॉल से हारने के बाद उन्हें रेपेचाज के जरिए वापसी का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड की जेमिमा यीट्स ब्राउन के खिलाफ वो जीत दर्ज नहीं कर सकी। कुल मिलाकर जूडो मैट पर भारत के लिए ये दिन संघर्ष, वापसी और सीख तीनों का मिश्रण रहा। साइकिलिंग ट्रैक पर भारत की उम्मीदें तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ी पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। स्प्रिंट से लेकर स्क्रैच रेस तक भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अगले दौर का टिकट हासिल नहीं हो सका। पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह यांगलेम ने 10.297 सेकंड के समय के साथ 22वें स्थान पर रहते हुए अपनी टाइम ट्रायल पूरी की। वहीं रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम 10.331 सेकंड के साथ 24वें और डेविड बेकहम 25वें स्थान पर रहे। इसके बाद 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में भी भारत की चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी। हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। after rewriting history in

0: Birmingham, India's lawn bowlers arrived in Glasgow carrying the hopes of building on that remarkable legacy. The sport that once delivered India's first ever Commonwealth Games gold and silver medals had once again raised expectations. This time, though, the decisive moments belonged to the oppositions. In the men's pairs, Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England, Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest lived up to its billing, with neither side willing to give an inch before it was eventually decided in a tie break. England held its nerve in the decisive moments, bringing India's impressive winning run and its knockout hopes to an end. Meanwhile, in the women's singles, Nayanmoni Sekia also started brightly against South Africa's Bridget Hasselman. The South African carried the momentum into the decider, ending Sekia's campaign and closing India's challenge in the event.
1: और अब आज होने वाले मुकाबलों पर एक नजर। ट्रैक साइकिलिंग में 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हर्षवीर सिंह सैकुआ और दिनेश कुमार होंगे। 100 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह, जबकि पैरा साइकिलिंग में 1000 मीटर टाइम ट्रायल महिला मुकाबले में लिशा दास वेलोड्रम में होंगी।
0: इंडिया विल हैव 3 जुडोकास इन एक्शन टुडे विद ऑल बिगनिंग देयर कैंपेन्स फ्रॉम द राउंड ऑफ 16। इशरूप नारंग वुमेन्स 78 kg, अवतार सिंह इन मेन्स 100 kg एंड यश खंगास इन मेन्स प्लस 100 kg।
1: पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 63 स्वर्ण पदक सहित कुल 154 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 100 पदक लेकर दूसरे स्थान पर आ गया है और कनाडा 18 स्वर्ण सहित 59 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग स्वर्ण पदकों के चलते लंबी छलांग लगाई है। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पर आ गया है।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी अनुपम पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.
3: ₹107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे FM रेनबो वाहिनी। मी आहे तुमचा मित्र गणेश आचपल। आत्ताच आपण ऐकलात राष्ट्रकुल स्पर्धा 2026 ठळक घडामोडी। आता काही क्षणात अज्ञात मुंबई या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाचा भाग 83 वा।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से

0: से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल

गुड मॉर्निंग मुंबई, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो और मैं हूँ आरजे नम्रता। एक बार फिर से आपको वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:41 हो चुके हैं एंड यस, मस्त मुंबई शुरू हो चुका है। मस्त मुंबई एक ऐसा शो जो हर सुबह देता है मुंबई को एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और थोड़ा सा पुरानी यादों का डोज। 2nd of August है आज, यानी कि फ्रेंडशिप डे है आज, जिसे हम अगस्त महीने के हर पहले रविवार को मनाते हैं। तो बस आज की ये संडे मॉर्निंग हम डेडिकेट करते हैं दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप को। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत दोस्ती वाले गाने आने वाले हैं बैक टू बैक आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता और हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।

गुड मॉर्निंग मुंबई, एक बार फिर से नमस्कार, सुप्रभात, नमस्कार। एक मिनट हो चुके हैं एंड यस, मस्त मुंबई का आज का संडे स्पेशल सेगमेंट यानी आज चल के तुझे जो है वो बस इसी गाने के साथ शुरू होने वाला है। और आज चल के तुझे मैं हम हर रविवार आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत सफर पर। हम हमारे देश भारत के ऐसी अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बातें करते हैं जहाँ पर आप अपना नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं, है ना। तो भाई आज हम चलेंगे महाराष्ट्र की एक ऐसी जगह है जहाँ हर मॉनसून में हरियाली अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। वैसे संडे मॉर्निंग है आज, आई रियली नो के, और ऊपर से फ्रेंडशिप डे भी है, तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल पता है कि आप अभी भी अलसा रहे होंगे, अपने बिस्तर में बैठकर चाय पी रहे होंगे, और अगर बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो बिलीव मी मौसम ने ऑलरेडी आपका मूड जो है वो सेट कर दिया है ना। लग रहा है ना कि कहीं बाहर निकल कर घूमा जाए। तो भाई आज हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने और मिट्टी की खुशबू और एक अच्छी खूबसूरत सी रोड ट्रिप पर मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ। एंड आज हम महाराष्ट्र के, जो हमारी मुंबई से काफ़ी पास है, ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो कि बहुत सुंदर है और काफ़ी पास भी है। मैं बात कर रही हूँ बदलापुर के कोंडेश्वर मंदिर के। जी हाँ, ये एक ऐसा खूबसूरत टेम्पल है जो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। तो इस मंदिर के बारे में यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। कहीं मत जाइए, और अगर जा भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका रेडियो जो है वो ऑन रहे, म्यूजिक भी होगा, मस्ती भी होगी और महाराष्ट्र की खूबसूरती भी। वेल, बारिश की बात हुई और बारिश का मौसम भी है तो इस गाने को मैं कैसे भूल सकती हूँ। 1942 लव स्टोरी से कविता कृष्णमूर्ति और साथ में कुमार सानू। बनी रही मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई और ये है आज चल के तुझे। बनी रही मेरे साथ एंड हम हैं म्यूजिकली ऑन।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
1: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
1: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स. आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स.
2: म्यूजिकली यॉर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजे नम्रता. एंड इस वक्त आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई पर आज चल के तुझे लेके चलो. हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कोंडेश्वर मंदिर की, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के बदलापुर में है. मुंबई से करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप बदलापुर स्टेशन मतलब ट्रेन से जाते हैं तो स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये एक शिव मंदिर ही नहीं बल्कि कंप्लीट मॉनसून एक्सपीरियंस है. बारिश के दिनों में ना यहाँ चारों तरफ हरियाली होती है और उसके अलावा छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं अगर आप स्टेशन से इस मंदिर की तरफ जा रहे हैं. पहाड़ों से आती आती ठंडी ठंडी हवा होती है, बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं, नेचर में जब आप जाते हैं तो नेचर की एक अपनी अलग एक वाणी होती है, एक आवाज़ होती है, वो आपको सुनाई देती है. और अगर आप सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं, इसके अलावा अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो भी ये एक बहुत खूबसूरत जगह है भाई. मॉनसून में जो है रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रैकिंग आपको नहीं करनी होती लेकिन स्टिल कोशिश करें कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहने. एंड यस ऑफ कोर्स अम्ब्रेला और रेनकोट आप अपने साथ ज़रूर रखें. मंदिर में शांति बनाए रखें क्योंकि जो भी ऐसी जगह होती हैं जो जहां पर हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो मेक श्योर कि वहां की जो सैंक्टिटी है, वहां की जो पवित्रता है, हम उसे बनाए रखें. और वाटरफॉल जो है उसके ज़्यादा आसपास आप ना जाएँ क्योंकि मॉनसून में थोड़ा जो है ना पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन ये खूबसूरत जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है. और आई मस्ट इंसिस्ट कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर मुंबई में आए हुए हैं इन दिनों तो आप कुंडेश्वर टेंपल ज़रूर जाकर आए क्योंकि ये बहुत ईजिली एक्सेसिबल जगह है. आपको कोई लंबी ट्रैकिंग नहीं करनी होती, स्टेशन से आप ऑटो लेंगे तो भी आप आसानी से बहुत आसानी से इनफैक्ट पहुँच सकते हैं. तो अगर आप मुंबई में हैं और सोच रहे हैं कि आज यानी कि आज के दिन फ्रेंडशिप डे भी है आज वैसे तो, कि कहीं जाया जाए अपने दोस्तों के साथ मिलकर,

तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। एंड अगर अभी नहीं जा सकते तो कभी भी जाइए, संडे के दिन हो सकता है आपको थोड़ी भीड़ मिले, लेकिन जाइएगा ज़रूर, ये बहुत खूबसूरत जगह है। फिलहाल आपको सुनाती हूँ ताल फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गाना, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है इस फिल्म से, एंड आई रियली होप आपको पसंद आएगा। एंड हाँ जी, विजेंद्र खटोल अकोला से मैसेज करते हो और कहते हैं कि आज मैं बहुत दिनों के बाद शो कर रही हूँ। यस ऑफ कोर्स, मैं बहुत समय के बाद शो कर रही हूँ एंड बस खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद ही सही मुझे आपके साथ ये जुड़ने का फिर से मौका मिल रहा है। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गाना जो दोस्ती से रिलेटेड है या फिर हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है कि कहाँ घूमा जाए, तो मुझे ज़रूर बताइए 8657661071, इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, क्योंकि सिर्फ हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंडशिप डे जो कि आज है, तो मुझे बताइए। और भाई धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं मुझे। इनफैक्ट 8:40 से ही काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके थे मुझे। पंकज महोड़ जी का मैसेज आया है अमरावती से, गुड मॉर्निंग लिखकर भेजते हैं, फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं भी देते हैं। दीपाली शिरोडकर का भी मैसेज मैं देख सकती हूँ, वो भी मुझे संडे की गुड मॉर्निंग विश कर रही हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखती हैं। दीपा पालकर जी का मैसेज भी इस वक्त मेरे सामने है। कई सारे खूबसूरत गीत उन्होंने फ्रेंडशिप से रिलेटेड मुझे भेज दिए हैं, एंड ऑफ कोर्स इन द मीन वाइल मैं ज़रूर प्ले करूंगी। इसके अलावा रंजीता देवी ने मुझे नाला सुपारा से मैसेज किया है, बाबा ने दादर से मैसेज किया है, श्रेया राउत वाड़वन से मैसेज करते हैं, फिरोज सिघनपुरिया एक डेडिकेटेड लिसनर है, हर बार हर दिन उनका मैसेज मुझे मिलता है और बहुत अच्छा लगता है देखकर। प्रमोद करखानिस जी का मैसेज है, डॉक्टर अंजू का मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ, एंड प्रदीप कृष्ण अनंत कृष्णन जी भी आज मुझे गुड मॉर्निंग और

0: हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करके लिख कर भेज रहे हैं। चेतन कुमार का मैसेज आया है इस वक्त और वो भी गया बिहार से मैसेज कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, कल नहीं सुन पाया किसी वजह से। कोई बात नहीं, इसके अलावा दत्ता जी, दत्त केदार जी ने मुझे मैसेज किया है पंडरपुर से, वाओ। एंड आदर्श कनौजिया जी का भी मैसेज मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने भी काफ़ी सारे गाने जो हैं मुझे लिखकर भेजे हैं एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। इतने खूबसूरत मैसेजेस आपने मुझे भेजे हैं, आपके गानों की लिस्ट भी भेजी है, मैं ज़रूर प्ले करने वाली हूँ। लेकिन अभी यानी कि 9:30 पर आप सुनने वाले हैं हमारा संडे का स्पेशल स्पॉन्सर प्रोग्राम वतन का राग, जो कि आप हमेशा यानी कि हर संडे को ठीक 9:30 सुनते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में वतन का राग आप सुनने वाले हैं और 10 न्यूज़ के पार में, न्यूज़ के साथ और न्यूज़ के उस पार में आपसे मिलूंगी लेकर नमस्ते भारत। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ में, हूँ आरजे नम्रता एंड हम हैं
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।

0: श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 19 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से अमित कुमार और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हरस्वरूप। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर
3: अब पड़ाव है एक और ओल्डन गोल्डीज का, और ये जो खूबसूरत ट्रैक
1: का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे।
0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 19 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से अमित कुमार और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हरस्वरूप। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे। बुधवार अवकाश।

राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी पहचान है, ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है, इसकी हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भूविज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भूविज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भूवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हो

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्रध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्रध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्रध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्र ध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्र ध्वजों

उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज दो रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए तथा इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को आकार दिया और 22 जुलाई सन 1947 को, स्वतंत्रता से ठीक पहले, हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्र ध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्रध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं, गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और

म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम ब्रेन वो। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से सुबह के 10:08 हो चुके हैं एंड यस, नमस्ते भारत लेकर मैं आरजे नम्रता फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने। और ठीक 10 बजे हमारे संडे का जो है स्पेशल सेगमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। और आज का जो हमारा खास दिन है, खास स्पेशल सेगमेंट है, वो है मेरा दिल मेरी बातें। एंड आज है फ्रेंडशिप डे, 2 अगस्त है। और फ्रेंडशिप डे हम हमारे भारत में पहले रविवार को मनाते हैं अगस्त महीने के। और बस दोस्ती का दिन है आज, दोस्ती की हम बात करने वाले हैं। और आप सभी को मेरे साथ ये प्रॉमिस करना होगा कि पूरे 1 घंटे यानी कि 11 बजे तक इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। दोस्ती की बातें करेंगे हम, दोस्ती कितनी खूबसूरत है इसके बारे में भी बातें करेंगे। एंड ऑफकोर्स क्योंकि आज संडे को हमने ट्रैवल की बातें करते हैं, तो दोस्ती और ट्रैवल इन दोनों को मिलकर कुछ मिला जुला एक अच्छा सा सफ़र करने वाले हैं हम। एंड एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है दोस्ती, फ्रेंडशिप अगर ना हो तो लाइफ बहुत तन्हा, बहुत अकेली फील होने लगती है। एंड आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त है ना सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, वो हमारे हर सफ़र को ना एक कहानी बना देते हैं। एंड अक्सर ऐसा होता है कि आप ना किसी भी एक ट्रिप पर जाते हैं, बहुत लग्जरी ट्रिप हो सकती है वो, सब कुछ होता है आपके पास, लेकिन वो खास दोस्त नहीं होता जिसके साथ आप घूमना पसंद करते हैं, या फिर वो ऐसा दोस्त जो आपकी हर ट्रिप को ना एकदम मेमोरेबल बना दे। अच्छी तस्वीरें होती हैं लेकिन यादें नहीं बनती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे ही बस हम कभी भी बिना कुछ प्लान किए अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं, ना कोई लग्जरी होटल होता है, ना कोई बहुत अच्छा 5-स्टार कैफ़े होता है, ना ही कोई बड़ा सा रिसॉर्ट। लेकिन आज भी उसी ट्रिप की कुछ बातें, कुछ यादें आपको हंसा देती हैं, आपकी हंसी रुक ही नहीं पाती है ना। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द पीपल विथ होम यू ट्रैवल। तो आज मेरा दिल मेरी बातें मैं बात करेंगी ट्रैवल और फ्रेंडशिप की, उन खास दोस्तों की जो हमारे सफर को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो बनी रहिए मेरे साथ, आगे होंगे शानदार गाने, दिल से निकली बातें, और आपकी दोस्ती के वो पल याद दिलवाने का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने। दोस्ती की बात हो रही है तो भाई इस गाने को हम कैसे भूल सकते हैं, शंकर महादेव उनकी आवाज में, दिल चाहता है इस फिल्म का टाइटल ट्रैक। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत पर मेरा दिल मेरी बातें, और हम हैं म्यूजिकली।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली।
1: क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।

उदित नारायण और साथ में थी साधना सरगम, जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म से था ये गाना। एंड अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की, तो भाई इस फिल्म को मैं कैसे भूल सकती हूँ, राइट? अगर आप भी मेरी तरह एक 90s किड हैं तो आपको पता ही होगा कि जब ये फिल्म आई थी, वैसे जब ये फिल्म आई थी नहीं, इनफैक्ट आज तक दोस्ती की जब बात होती है तब इस फिल्म का जिक्र हमारे जहन में सबसे पहले होता है, राइट? हम चले जाते हैं उस दौर में जब ये फिल्म आई थी, और आज भी ऐसा लगता है कि भई यार ये उस दौर की या उस समय की नहीं बल्कि आज की फिल्म है ना। वैसे फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं हम, और साथ में कि किस तरह फ्रेंड्स जो है वो ट्रैवलिंग को, यानी कि हमारे सफ़र, हमारे जर्नी को इतनी खुशनुमा बना देते हैं। हर फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो ट्रिप प्लानर बन जाता है, जो कि सिर्फ खाने की लोकेशन सर्च करता रहता है। उसे बस ये काम होता है कि भाई कहाँ अच्छा खाना मिल रहा है। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं भाई जो फोटो शूट ही करवाते रहते हैं, मतलब फोटो से बड़ा प्यार होता है। सेल्फी खुद की लेंगे या फिर अपने दोस्तों की या फिर वादियों की। एंड कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं भाई जो हमेशा क्लूलेस रहते हैं और पूछते ही रहते हैं भाई अब कहाँ जाना है, अब क्या करना है। वैसे सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये ट्रिप खत्म होती है ना, तब ना ही तो हमें वो होटल याद रहता है, ओके, ना ही हमने क्या कुछ खाया वो याद रहता है। याद रहती है तो दोस्तों की वो बेवजह की हंसी कार में जब हम जाते हैं और बेसुरे गाने लगाते हैं जिनका हमारी ट्रिप से शायद कुछ लेना देना भी नहीं होता। कुछ ऐसे गाने भी हम प्ले करते हैं, तो बस ये छोटी छोटी बातें जो हैं। एंड ऑफ कोर्स गलत रास्ते, जब हम कभी कभी गलत रास्तों पर चले जाते हैं ऑफ रोडिंग के चक्कर में, हमें लगता है कि हाँ यार ये शॉर्टकट हो सकता है, और फिर हमें पता चलता है कि भाई ये तो कोई डेड एंड है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं, हमारे सफ़र को यादगार बना देती हैं। इसलिए अगली बार डेस्टिनेशन चुनने से पहले अपना ट्रैवल पार्टनर ज़रूर सोचिए, वो कौन सा मज़ेदार दोस्त है जो आपकी जर्नी, आपके सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकता है। और उसी के साथ घूमिए यार, दोस्तों के साथ सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है, सच मानिए। वैसे इस बात को आप ज़रूर मानते होंगे। मिली नायर और अमित त्रिवेदी की आवाजों में काय पूछे इस फिल्म से गाना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे अमृता, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत पर, मेरा दिल मेरी बातें, एंड हम हैं म्यूजिकली योर्स।

ब्यूटिफुल काइपो छे इस फिल्म से था ये गाना। एंड हम बात कर रहे हैं ट्रैवल और फ्रेंडशिप की। भाई ट्रैवल तो आजकल हम बहुत करते हैं ना, हर वीकेंड पर हम कोशिश करते हैं कि हम एक सोलो ट्रिप पर निकल जाएं ही अपने घरों के आसपास। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं। एंड लेकिन कभी कभी ना पूरा ट्रिप जो है वो हम कैमरे में कैद करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसे जीना भूल जाते हैं। कभी फ़ोन नीचे रखकर बस बारिश को महसूस कीजिए, पहाड़ों की हवा को महसूस कीजिए और अपने दोस्तों की बातों पर ना खुलकर हंसिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग दोस्तों के साथ जाते तो हैं लेकिन उनका साथ जो है वो पूरी तरह से जीते नहीं, अपने फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर किसी से बात करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, नहीं इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं बाकी सारी चीज़ों में कि अपने दोस्तों को वो समय नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए। बिलीव मी, सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली तस्वीरों से ज़्यादा दिल में बसने वाली यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। और अगर आपके पास वो दोस्त है तो भाई आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि वो दोस्त जिनके साथ साइलेंस भी कंफर्टेबल लगने लगता है वो दोस्त कमाल के होते हैं, है ना। गोलमाल फिल्म से ये वाला गाना आपको सुनाऊंगी लेकिन थोड़ी देर में, लेते हुए एक छोटा सा

0: ब्रेक और उस ब्रेक के उस पार ये वाला गाना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता एंड हम हैं म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

वाजिद शाह, उदित नारायण और सूजी की आवाजों में आपने सुना पार्टनर फिल्म से ये वाला गाना। और भाई दोस्ती की आज हम बात कर रहे हैं और साथ ही ट्रैवल की भी बात कर रहे हैं, तो इस वाली फिल्म के इस वाले गाने को मैं कैसे भूल सकती हूँ, राइट। गोविंदा और साथ में सलमान खान, क्या खूब जोड़ी रही है दोनों की, कमाल की एक्टिंग है, कमाल की परफॉर्मेंस है, एंड ऑफकोर्स पूरी तरह से एंटरटेन करने वाली ये फिल्म है। 10:40 हो चुके हैं एंड इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत पर मेरा दिल मेरी बातें, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। कितनी खूबसूरत होती है दोस्ती, एंड कितना खूबसूरत हो जाता है वो सफ़र जिसमें हमारे दोस्त या फिर ये कहूँ कि हमारा वो एक खास दोस्त शामिल हो जाता है और हमारे सफ़र को पूरी तरह से यादगार बना देता है, खुशनुमा बना देता है, और कितनी सारी मेमोरीज जो है हमारे बोलते हैं ना यादों के पिटारे में जमा करवा देता है। तो अगर आप भी खुशनसीब हैं मेरी तरह तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर घूमने जाया कीजिए, क्योंकि कैसे भी आप जगह पर जाए ना, लेकिन अगर आपका वो प्यारा सा खास दोस्त आपके साथ है तो आपका आपकी एक बोरिंग सी ट्रिप भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है, राइट। आशा भोसले और अलका याग्निक की आवाज में और साथ में उदित नारायण, मुझसे दोस्ती करोगी इस फिल्म से ये गाना मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। बट बिफोर दैट, युवराज फिल्म से ये वाला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान, इन सभी की आवाज में। बनी रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे अमृता, आप सुन रहे हैं मेरा दिल मेरी बातें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन।

आयशा भोसले, अलका याग्निक और उदित नारायण, इन सभी की आवाजों में था ये गाना फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे। भाई दोस्ती तो करनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्ती के बिना आप जिंदगी को इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बना ही नहीं सकते, राइट? ट्रैवल से रिलेटेड और दोस्ती से रिलेटेड आज हमने खूब सारी बातें करी हैं, एंड आई रियली होप कि आज का शो और जो भी बातें मैंने आपके साथ की आपने बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय किया होगा। तो बस अपने दोस्तों के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए, उनके साथ घूमिए फिरिए। वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है, संडे है, अगर आपको मौका मिले, और वैसे भी आज पूरा दिन अभी बाकी है यार, तो निकल जाइए अपने दोस्त के साथ किसी छोटी सी ट्रिप पर, या फिर कुछ नहीं आपको सूझ रहा है तो एक मूवी देखने ही चले जाइए, राइट? अगले शो में आपसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। इस शो के दो आखिरी गाने आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, एंड बाय द वे आरजे नमिता आ चुकी हैं स्टूडियो में और 10 बजे के उस पार आपके साथ जुड़ने वाली हैं। मैं हूँ आरजे नमिता, इस शो में मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो में बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। जाते जाते जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से वाला गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, क्योंकि हम हैं म्यूजिकली योर्स। बाय।

हाय हेलो सत श्री अकाल वणकम केम चे कसा काय मुंबई। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ करने आई हूँ दिल की बात। लेकिन दिल की बातों के पहले समाचारों का वक्त हो चुका है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। सपोर्टिंग द रियल हीरोज द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया थीम पर आधारित यह आयोजन देश के सैनिकों के समर्पण, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स यूथ क्लब, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा इस बात पर जोर देते हैं कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। और समाचारों के अंत में, ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। भारत के खाते में सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों की ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर

0: 111। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जाने, समझे और उसके महत्व को भी पहचाने और साथ ही ये भी जाने कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर। अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
1: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जाने, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ।
1: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द और उन्होंने एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बेहद सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों से ये सवाल करते हैं। अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तब बहुत सम्मान मन में आता है। हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए।
2: बहुत सही बात है, डॉक्टर कलाम जो है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
1: जी।
2: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
1: जी।
2: हाँ, और उसके बावजूद उनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से, वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल है उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
1: जी।
2: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया और उसके बाद वो और कई चीज़ों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पे जो रहे 5 वर्ष उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स के साथ जुड़े रहे। और उनका कहना था कि मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ
1: जी।
2: उनको एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा लगता था जब वो बच्चों से बात करते थे और ये सब मिला जुला के जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक मेरे ख्याल है बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। उनमें हल्का सा भी अहंकार नहीं था। वो चाहे राष्ट्रपति रहे हों या जब वो चीफ रहे हों, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हों या डिफेंस के साइंटिस्ट रहे, डायरेक्टर जनरल, वो उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। जब बात करते थे वो समझने की कोशिश करते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहे हैं।

0: और समझने की कोशिश करते थे, सीखते थे और उससे फिर आगे बढ़ते थे
1: जी।
0: तो ये एक उनकी बहुत अच्छी मेरा ख्याल है क्वालिटी थी
1: जी।
2: जी
1: तो ये हमें याद रखनी जी, चाहिए जी। डॉक्टर नकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे और शुरुआती के दौर से, अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी
1: जी।
2: और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सब के लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए। तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी, और वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव से मिलता है, उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी, उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा करी, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया। तो उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया
1: जी। यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल, जरूर जरूर। और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता था। और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा
1: जी। बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिलीं, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल उसे 3 बार मिली
0: जी,
1: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं उन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर, मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तुम मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर, आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी। मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से, बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी हॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का

0: नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए, मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती। कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा। एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ। यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
1: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
0: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी।
1: जी,
0: उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तब वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही की।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले जिन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी,
1: वो अधिकतर मतलब कहूँगा पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर्स जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं
0: जी,
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है, है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहाँ पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती बतलाई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी,
1: तो फिर वो यहाँ आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूँगा वो काम करा जो पुराने जो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलके उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब जो रहता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए, और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
0: जी।
1: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था, और उसके बाद फिर वो समय देके मतलब वो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
0: जी,
1: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पे जाके समय बिताए
0: जी,
1: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए
0: जी।
1: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, फिर वो राष्ट्रपति बन

0: और वर्धमान में हम लोग पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
1: जी,
0: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने। जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मैं कह रहा सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे। उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
1: जी।
0: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
1: जी,
0: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनकी जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
1: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
0: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग हो जाते थे
1: जी।
0: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग माइसोर में थे, और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
1: जी,
0: बाकी 600-800 लोग और हैं, वो उनके लिए मतलब नहीं था क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात कर पूछा था कुछ
1: जी।
0: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड ए यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
1: जी,
0: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
1: जी।
0: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
1: जी।
0: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि दिसंबर 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
1: जी।
0: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
1: जी।
0: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
1: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
1: में जी। तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
0: गानों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
1: जी,
0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
1: जी,
0: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
1: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
1: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए। और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पे काम करते रहें। ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया डीआरडी में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे
0: जी।
1: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था। ये कई सालों से ये नियम था और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी
0: जी।
1: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने
0: जी।
1: और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया
0: जी।
1: तो वो मिसाइल मैन हुए और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्मी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर, और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए उतने अच्छे तरीके से, डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा
0: जी। बिल्कुल, मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी
2: जी,
0: अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
2: जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं
0: जी,
2: तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहां वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता जी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के मेन, और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना
0: जी,
2: किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे, वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था
0: जी।
2: जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे
0: जी।
2: तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से आदर से भर देते हैं
0: जी। बिल्कुल, और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी
2: जी। क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था। उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज
0: जी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत में बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
3: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
0: जी,
3: और जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता। अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन

0: बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के, इसमें हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो कि बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
1: जी,
0: इसका बनता है पूरा PURA। वो कहते थे कि इस पे काम करो, तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
1: जी।
0: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपके जो बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे, समझते थे
1: जी,
0: बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है, मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पर डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पर उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी छाप है
1: जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय के, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
2: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसके उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश करी, वहाँ से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
1: जी।
2: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए, रिसर्च के लिए खासकर, जैसा कि कलाम साहब का खुद का कहना था, इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे। तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया
1: जी।
2: इस तरह से आप देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है। और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सब काबिले तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना
1: जी
2: हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है
1: जी, उसमें हम और बहुत कुछ
2: कर सकते हैं।
1: जी PPP मॉड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस
2: फील्ड
1: है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है
2: जी।
1: यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
0: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोगों को राह दिखाई है
1: जी
0: उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी
0: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें

0: तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और जो सजेस्ट किए हैं उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
1: जी बिल्कुल।
2: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती, अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए, डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे कि मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था।
1: बिल्कुल।
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूं।
2: जी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ इसी मोड़ पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
2: वाह।

0: सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में
0: जी,
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए
0: जी।
1: और ये नकल भी मेरी बात मान जाएंगे, हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सकें, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सकें। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है, परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन।

0: मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकंड स्टेज में मैं जो था डीआरडीओ के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी एज एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज एरोस्पेस इंजीनियर, और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा।
1: जी,
0: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे राइटिंग में जो लिखते थे, एक था जैसे फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट। कहते फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, भी बड़े दुखी हुए, सतीश धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
1: जी।
0: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरे ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं
1: जी,
0: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं
1: जी। जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहे, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया, तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन, तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोतादरी आयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं, अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते तो अच्छा बन जाते हैं। तो वही उनका प्रयास है, उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे, जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता है मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर

0: उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने है, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाले एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं, आप विज्ञान प्रसार के साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं, और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: जी, तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो, और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे, और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं, और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मैं हूं आरजे नमिता आपके साथ। नीचे प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्चा बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान

हैदराबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा गया। इस अवसर के साथ अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भ्योर ने कहा है कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते, जी लो इन पलों को हंस के जनाब, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। जी हाँ, बचपन वाली दोस्ती, प्यार वाली दोस्ती, दोस्ती वाली दोस्ती जो होती है वो जो है ना जमाने निकल जाते हैं। कई लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके बचपन के यार दोस्त उनकी जवानी में उनके बुढ़ापे तक उनके साथ रहते हैं, और आज उन्हीं दोस्तों के लिए आज का दिवस जो है मैत्री दिवस जो मनाया जाता है, आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। मैं हूँ नमिता, आप सुन रहे हैं म्यूज़िक कैफ़े, और आज हम टाइटल सॉन्ग्स यानी शीर्षक संगीतों के बारे में ज़रूर जानेंगे। लेकिन दोस्ती की बात हो रही है तो जो दोस्त आपसे दूर हैं या जो सिर्फ इस दिन यानी कि दोस्ती वाले दिन में आपको एक मैसेज करते हैं उनके लिए ये वाला गाना, और जो आपसे रूठ गया उसके लिए भी एक गाना है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी दोस्ती तो सच्ची होती है मगर कोई ना कोई बात हो जाती है, और जब दोस्ती वाला दिन आता है तो वो बहुत याद आते हैं, तो उनके लिए ये वाला गाना। बने रहिए एफएम रेनबो पर, मैं हूँ आरजी नमिता, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे।

सच है ना दोस्तों, वक्त के साथ वाली दोस्ती आपको कई सारे लोगों की मिलेगी। आज आपका वक्त है, आप अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी जगह पर हैं, और या उनके एरिया में रहते हैं इसलिए आपसे दोस्ती रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये भीड़ आपके पीछे हमेशा ही चलती है। और हमेशा मेरी माता जी एक बात कहा करती थी कि जब जिसको भी अपना बनाना चाहोगी उसकी तरफ ध्यान दोगी तो वो अपने आप चलकर तुम तक आ जाएगा, तुमसे दोस्ती भी कर लेगा। लेकिन जो सच्ची दोस्ती होती है ना, उसकी तरफ ध्यान ना भी दें पर वो फीलिंग, सच्ची वाली फीलिंग, वो बनी रहती है। और ये दिखाई देती है तब जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तब वो दोस्ती आपके पास रह जाती है जो उस डार्क डेज में आपकी पहचान बनाती है, आपको कहीं ना कहीं मुस्कुराने पर मजबूर करती है और ये कहती है कि भाई बिल्कुल निराश मत हो, ऊपर वाले ने आपका साथ देने के लिए आपका एक दोस्त खड़ा किया है। और वो दोस्त जो है ना, इन हजारों की भीड़ को पछाड़ कर आके आया है। ऐसा कोई दोस्त आपके पास है, आप बिल्कुल उसका नाम लिख के भेज दीजिए 8657661071, जो आपका सच्चा साथी है, जो आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी उम्र से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आर्थिक स्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दोस्ती यथावत रहती है। और उसको देखते से ही आपके मन से भी दोस्ती वाली फीलिंग निकल आती है, दोस्ती वाले गाने निकल आते हैं। और जब जब ये गाने आप सुन रहे हैं तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, वही नाम दीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर एक या दो ही हो सकते हैं, कभी भी वो लंबी लिस्ट होती ही नहीं है। अगर आपके पास है तो वो लिस्ट भी पहुंचा दीजिए हमें, कहाँ 8657661071 पर। बने रहिए FM रेनबो के साथ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, दोस्ती वाला एक प्यारा सा गाना।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, दोस्ती का मौसम है आज का दिन। जो है फ्रेंडशिप बैंड लिए घूम रहे हैं बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स, और यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उम्र की कोई बात ही नहीं होती। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो, मैंने कहा ना, ओल्ड एज तक काम आती है। और किसी सफ़र में जब जो बातें हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों से नहीं कर पाते, वो हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और ऐसी शेयरिंग होती है जिसमें ना बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ हो जब यूं ही रास्ते निकल गए हो दोस्ती दोस्ती में, तो ज़रूर लिख कर भेजिए। बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने दोस्तों के नाम टाइप करके लिख दिए हैं। बिल्कुल आपसे बात होगी, आपके दोस्तों के नाम बोलूँगी हिट एंड नॉट कार्यक्रम में। फ़िलहाल अल्फाज कम हो तो भी असर छोड़ जाते हैं, कुछ शीर्षक पूरी किताब का सफ़र बन जाते हैं। जी हाँ, शीर्षकों पे बात करेंगे। शीर्षक वो चीज़ होती है, टाइटल्स वो चीज़ होती है जो आपकी पहली पहचान होती है। क्या सिर्फ नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? नहीं ना। लेकिन क्या किसी किताब, किसी फिल्म, गाने या इंसान का टाइटल उसकी सफलता तय करता है? तो कई हद तक हम इस बात से एग्री भी करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइटल्स के विज्ञान, मनोविज्ञान, मार्केटिंग और बॉलीवुड की। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के संचार विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कंटेंट का पहला निर्णय अक्सर उसके टाइटल पर आधारित होता है। यानी पहले नाम बिकता है, फिर काम बिकता है। इसलिए कहा जाता है पहली छाप चेहरा नहीं शीर्षक बनता है। यानी आपका नाम जो है ना, वो ही इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके बाद आपकी एक रूपरेखा इंसान मन ही मन में तैयार कर लेते हैं। और ऐसे ही होता है ना, जब कोई अपना नाम कहता है और सिमिलर सा नाम हो आपके पास, कोई घर में कोई हो या आपका कोई फ्रेंड हो उसी नाम का, तो एक कनेक्शन सा बन जाता है और एक छवि ना अपने आप बन जाती है। ऐसा ही शीर्षक जो होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बात करेंगे इस गाने के उस पार और बजाएंगे टाइटल सॉन्ग जो होंगे आपकी पसंद के और फेमस वाले।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मैं बिल्कुल ऐसा ही बोलने वाला एक दोस्त चाहिए जो हर बात पे यही बोले कि मैं हूँ ना, तो टेंशन काहे को लेती है कि नहीं? ऐसे आपके पास दोस्त हैं तो बिल्कुल लिख भेजिए 8657661071 पर कि क्या है उस दोस्त का नाम और क्या खासियत है उसकी। फिलहाल शीर्षकों की बात हो रही है, टाइटल्स की बात हो रही है। अगर शोले फिल्म का नाम रामगढ़ की कहानी होता तो क्या वही असर होता फिल्म का? स्टोरी लाइन वही रहती, लेकिन जब पहला फोकस हम करते हैं तो नाम से बहुत फर्क पड़ता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाम अगर राज और सिमरन होता तो क्या वही जादू चल पाता? टाइटल भावनाएं जगाता है, टाइटल सिर्फ नाम नहीं होता, वो पांच काम करता है, पहचान देता है, याददाश्त बढ़ाता है, भावना, जिज्ञासा और ब्रांडिंग का काम करता है। इसलिए आज दुनिया की हर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, पहले अपना नाम चुनने के लिए बहुत सारी टीम को इकट्ठा करती है और फिर नाम चुनती है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जाते हैं, यानी नाम का पेटेंट करवाना भी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा आज एक रीज़न बन गया, और वो इस वजह से क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। तो कोई भी अगर आपसे कहता है ना कि नाम में क्या रखा है, तो उसे बोल दीजिएगा बहुत कुछ रखा है। और कई बार जो बड़े पदस्थ लोग होते हैं उनको भी आपने देखा होगा, अक्सर बोलते हैं कि मेरा नाम ही काफ़ी है। तो जो लोग ये कहते हैं मेरा नाम ही काफ़ी है, उनके लिए आ रहा है ये वाला गाना, टाइटल सॉन्ग है डॉन फिल्म का। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

तो दोस्तों आपको पता है ना, कहीं बॉलीवुड की फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने शीर्षक के अनुरूप अपनी जो स्टोरी है उनको भी चेंज किया है। कई बार शीर्षक इतना दमदार होता है कि स्टोरी में कहीं ना कहीं उसका हमें जुड़ाव देना पड़ता है, और स्टोरी लाइन में जब हम जुड़ाव देने की कोशिश करते हैं तो कहानियों को बदलना भी पड़ता है। ऐसे ही कई किताबों की बात की जाए तो गोदान जैसी बड़ी जो उपन्यास है उनकी बात की जाए, उसमें होरी एक कैरेक्टर था। अगर इस उपन्यास का नाम होरी की कहानी रख दिया जाता तो क्या वही प्रभाव होता? अगर गुनाहों का देवता का नाम चंदर और सुधा रखा जाता तो क्या वही असर होता, और क्या वो किताबें उतनी ही फेमस होती? एक अच्छा टाइटल हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी गैप पैदा करता है, और थ्री इडियट जैसी फिल्म होती है या इस टाइप के टाइटल्स की जो मूवी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाती है कि भाई ये तीन है कौन, ये किसकी बात हो रही है। तो इस तरीके की फिल्में अक्सर ही आती है, और एक बहुत बेहतरीन गाना इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, वो जो दोस्ती का मौसम चल रहा है आज का, संडे का दिन है और टाइटल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तीनों ही रूप में ये गाना बिल्कुल फिट इन होता है। आप भी सुनिए FM रेनबो 107.1।

बिल्कुल दिल से आप लिख भेजिए हमें कि अगर आपकी ज़िंदगी का टाइटल कोई लिखना चाहे, आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनाना चाहे, किस पुस्तक लिखना चाहे, तो उसका टाइटल क्या होगा, कहाँ लिख के भेजेंगे? 8657661071 पर हिट एंड हॉट कार्यक्रम में आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, समाचारों का वक्त हो गया है। समाचारों के उस पार आपके साथ करेंगे बात, हिट एंड हॉट में बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 107.1 MHz पे. मैं हूँ आरजे नमिता. आपके साथ हिट एंड हॉट प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमने पूछा था एक सवाल. सवाल ये था कि अगर आपकी लाइफ स्टोरी पर कोई किताब लिखी जाती है, कोई फिल्म बनाई जाती है, तो उसका टाइटल क्या होगा. बहुत सोच समझ कर लिखिएगा, क्योंकि नाम में कुछ बात होनी चाहिए, कुछ अलग अंदाज होना चाहिए, तब तो बात है. फिलहाल हमारे पास बहुत सारे लोगों के आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. बताऊंगी मैं इस गाने के उस पार. दोस्ती वाले गाने की फरमाइशें लाइन से आई हुई हैं. दीपा पालकर जी की पसंद का ये वाला गाना आ रहा है. उनकी टाइटल जो है वो ये होगी कि द बेस्ट फ्रेंड. तो उन्होंने लिखा है द बेस्ट फ्रेंड नाम की किताब जो है ना वो मेरे ऊपर छापी जा सकती है. तो आप

कैसी लगी बताइएगा ये टाइटल, और भी कुछ ऐसे टाइटल खंगालिए जो हटके हों, जिनमें सुनते ही कुछ ब्लास्ट आए, लिख भेजिए 8657661071 पर।

तो दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जैसे आपका और मेरा है। ये रिश्ता ऐसा अनमोल होता है कि जितने बार इसमें खंगाला जाए तो नई चीज़ें आती ही जाती हैं। और आज की नई बात यह है कि आपसे पूछा है मैंने एक सवाल, सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी पर यदि कोई किताब या कोई फिल्म बनती है तो उसका टाइटल क्या होगा। फिरोज़ जी बड़े आसानी से लिखते हैं, हीरो नंबर वन जो है ना, ये मेरी फिल्म का टाइटल होगा। बिल्कुल आपके ऊपर बनेगी तो यही नाम रखी जाएगी। पंकज जी कहते हैं कि मेरी लाइफ पर कोई किताब बनती तो उस किताब का नाम होता मेरी अधूरी कहानी। अमरावती से लिखते हैं बिल्कुल। और प्रमोद जी की पसंद का जो गाना है ना, वो बैक टू बैक लगा हुआ है। फिलहाल हम उन श्रोताओं के नाम ले लें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सरहानपुर से जोन, रोजी, पर्ल, विलिस, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी हमारे साथ हैं, पंकज जी हैं, विजेंद्र जी, यशवंत जी, टी डी मल्होत्रा जी, हर्षदा जी, लालगिरी गोस्वामी जी, अभिजीत जी, दीपा पालकर जी, फिरोज जी हमारे साथ हैं, गोपाल जी हमारे साथ हैं, दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर जी, अजय साकरी जी इंदौर से, अमित भगत जी, ओमकार जी, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक ठाकुर जी, अशोक पाटिल जी वर्ली से, संजय दर्शन जी, धनंजय जी नवी मुंबई से, सुरेश जी बाबा जी दादर से, श्रेया राउत जी, प्रणव शिंदे जी, आदर्श कनौजिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हिट एंड नॉट में। और सवाल एक बार फिर दोहरा देती, आपको लिखना है अपनी जिंदगी की टाइटल क्या होगी आपकी, और कौन सी किताब या कौन सी फिल्म आपकी जो जिंदगी है उसको पूरी तरह से दर्शाती है और डिफरेंट भी है। बिल्कुल लिख भेजिए, कहाँ, 8657661071 पर। अगला गाना प्रमोद जी की पसंद का आ रहा है आप तक।

ये जो गाना अभी सुना हमने श्याम सुंदर जी गोवा से, हमें इसे पसंद करने की इसकी फरमाइश जो है वो देते हैं, और ये वर्ल्ड फेमस दोस्ती का गाना है। मेरे ख्याल से हर फ्रेंडशिप डे पे इसी गाने से होती है शुरुआत। लेकिन हमारे यहाँ जब टाइटल्स की बात हो रही है तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये टाइटल जो है अमित भगत जी ने दिया है, तो उनकी ज़िंदगी पर ये टाइटल सूट करता है। आपकी ज़िंदगी पर कौन सा टाइटल सूट करता है जल्दी से लिख कर भेज दीजिए 8657661071 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अजय शाकरी जी इंदौर से लिखते हैं कि मेरा टाइटल हो सकता है कि एक बेचारा ईमानदार इंसान। वाह क्या बात है, कुछ तो अलग है। जो बेसिकली हम किसी की कॉपी ना करके जब कभी कुछ ओरिजिनल बनाते हैं तो कुछ कभी कभी ऐसे ही टाइटल बनते हैं, और कई बार जब पॉलिश्ड होते हैं तो बेहतरीन सा नाम निकल कर आता है। आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन सा वो नाम कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। और हमारे साथ अभी अभी जो जुड़े हैं हमारे दोस्त, उनका नाम ज़रूर लूँगी। मुकेश कश्यप जी हमारे साथ हैं, संदीप कुमार जी हैं, और विजेंद्र जी गोपाल जी का नाम तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, और हमारे कई सारे साथी हैं जो ये लिख कर भेज रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का टाइटल क्या होगा। फिलहाल आपकी ज़िंदगी का क्या होगा लिख भेजिए, आपकी पसंद का गाना कौन सा होगा वो भी लिख भेजिए। अशोक जी की पसंद का ये गाना आ रहा है आप तक।

ये गीत आप सुन रहे थे अमित भगत जी की फरमाइश पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, समाचार होंगे और समाचारों के उस पार हिट एंड हॉट का सफर जारी रहेगा। आपके जिंदगी के टाइटल हम तक पहुंचते रहें, यही दुआएं हैं। 8657661071 इस पर लिख भेजिए अपनी जिंदगी का शीर्षक।

जी हाँ, म्यूजिकल ईयर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं हूँ आरजे नमिता। आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट प्रोग्राम। और टीडी मल्होत्रा जी का जवाब आया है कि उनकी फिल्म का टाइटल होगा इंग्लिश में, बड़ा इंग्लिश में उन्होंने लिख के दिया है। ऐसा नहीं है कि उनका टाइटल यूं ही साधारण है, सेल्फ मेकिंग एंड साथ ही लिखते हैं सेल्फ मेकिंग एंड लक टेकिंग। जी हाँ, बड़ा अच्छा सा टाइटल है। आप भी अपनी किताब का अगर कोई टाइटल ढूंढ रहे हैं तो टीडी मल्होत्रा जी से बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से बहुत सारी बातें छोटे से शब्द में कह दी गई हैं। फिलहाल पंकज जी ने हमें अपनी ज़िंदगी का टाइटल लिख के भेजा है, हमारी अधूरी कहानी। इसके साथ ही विजेंद्र जी अकोला से लिखते हैं, हीरो नंबर वन है मेरी ज़िंदगी का टाइटल। यशवंत जी लिखते हैं कि ज़िंदगी का नाम समाज सुधार होगा, ये उनकी फिल्म का टाइटल होगा, उनकी ज़िंदगी पर बनी हुई होगी। बाजीगर टाइटल दिया है दिलेश जी ने, बैंड्रा से हमें लिखते हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे विजेंद्र जी अकोला से, इसे पसंद करते हैं साथी यशवंत जी हमें धाराशिव से लिखते हैं, इस गीत की फरमाइश करते हैं। इसके बाद ये अगला गाना जो आ रहा है, ये आ रहा है गोपाल जी की पसंद का, इमली का बूटा गाना है। और इस वक्त पर ये गाना एक्चुअली बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से है। बहुत सारे और भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपने टाइटल्स लिख के भेजे हैं, जिसमें अजय साकरे जी हैं जो लिखते हैं एक बेचारा ईमानदार इंसान, ये होगा उनकी ज़िंदगी का टाइटल। साथ ही हर्षदा जी हमें लिखती हैं जर्मनी से कि मेरी फिल्म का जो टाइटल होगा वो होगा सायोकस, यानी संस्कृति, योग, कला और सफ़र। इन चारों शब्दों से उनके पहले अक्षर को अगर लिया जाए तो सायोकस जो है वो बनता है और ये होगा उनकी ज़िंदगी का टाइटल। आपको कैसे लगे ये अतरंगी टाइटल्स, लिख कर भेजिए 8657661071 पर।

0: बादल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और यही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं।
1: सो ये गीत के बाद हमको भी घर जाना है और इसीलिए आपको ये सुनाना है कि दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। ऐसी दोस्ती कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर्षदा जी की पसंद का ये आखिरी वाला गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। फिलहाल आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और आपका और हमारा साथ भी यूं ही बना रहे और ये दोस्ती यूं ही निभाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय।

0: At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling, offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Gangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge, while Ronaldo Lakdongjam will compete in the men's 1000m time trial in track cycling. Para-track cycling events are also scheduled on the closing day. A report.
1: India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pankaj secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para-athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे, और इस संकल्प

0: में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबर

0: कांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
3: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र

0: बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Kalani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। वक्त हुआ है 5:02 शाम का ये वक्त और 50-51 सेकेंड्स, प्रोग्राम लव यू जिंदगी शुरू हो चुका है और बस गानों का इंतजार है। मैं हूं वसीम, आप लोगों के साथ रहने वाला हूं रात 8 बजे तक। अंदाज़े बयां होगा 6 से 7, उसके बाद हम तुम, आप लोगों के रिक्वेस्ट, बनी रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आप और हम, लव यू जिंदगी, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक है ये सारे के सारे गाने। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:12 और 50-51 सेकंड्स हो चुके हैं। 50-51 सेकंड्स फिर से एक बार आप लोगों के साथ लव यू जिंदगी में वसीमा है। ये वक्त जो गुजरता जा रहा है ना, ना हंटर फिल्म से आपने ये ट्रैक सुना सिफर, शाम सवेरे तेरी यादें आती, थोड़ा रिलेवेंट हो गया। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी वीकेंड आप सभी लोगों को। देखो ये दिन शनिवार, इनफैक्ट रविवार और सॉरी, और इसके बाद छुट्टियां, दोस्त होते हैं, कॉलेजेस होती हैं, स्कूल होती, तो उसके बाद सेलिब्रेशन अलग होता है। ये और बात है कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यू आर ऑलवेज़ कनेक्टेड, और ज़्यादातर यू आर ऑलवेज़ कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया ओनली। अब कहाँ मुलाकातें होती हैं, वो दोस्त जो रोज़ मिलते हैं पढ़ने के लिए, और बात अलग है कि मुलाकातें हो जाती। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त सा किस्सा है जो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन आई फील इट्स हम तुम तक आपको इंतज़ार करना होगा, और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात वहाँ पर शेयर करूँगा। फिलहाल और भी कुछ सारी बातें हैं, लेकिन ये गानों का सिलसिला भी और आप लोगों के मैसेजेस भी और आप लोगों के कॉल्स भी। तो ये है मंगेश, ये है विजेंद्र, वसंती, प्रणव शिंदे, पंकज मौर, किशोर नायक, श्रीपद, मंगेश माथरे, सब के सब जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं FM रेनबो के साथ। तो FM रेनबो, बातें, म्यूज़िक, और ये रविवार, और साथ ही साथ फ्रेंडशिप डे, इससे स्पेशल डे क्या हो सकता है। लेट्स सेलिब्रेट आप और हम मिलकर, दिल से दिल तक, और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन गाने। बने रहिए मेरे साथ, कहीं भी जाएं सुनते रहें FM रेनबो।

लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली यॉर्स। और 5:30 बज गए हैं आप और हम, देखिए आधा घंटा कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं चला। आप लोग ये गाने सुन रहे थे और फीडबैक दे रहे हो, उसके लिए शुक्रिया कि गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रणव, थैंक यू। महेश बोरा, अजय साखरे, राजेंद्र परमार, सुनील, आपका भी शुक्रिया बने रहने के लिए। और दोस्ती से जुड़े गाने सुनने आपको ना डेफिनेट सुनाऊँगा मैं, ऐसे मैसेज नहीं आया। ऑफकोर्स एक होता है ना, बहुत ऑब्वियस फील करते हैं कि हमें सुनना है और बातें उससे जुड़ी हुई। वैसे दोस्ती की बात करें या कुछ दोस्ती क्रिकेट मैच के मैदान पर, है ना, यूं ही बन जाती है खेलते खेलते अनजानों से। मुझे बॉलिंग करना है, मुझे बैटिंग करना है, ठीक है। बैटिंग तो बहुत कम लोग देते होंगे, लेकिन जो बैट्समैन है वो बॉलर्स को ज़रूर कोई भी बाहर से आ जाता होगा तो कहते होंगे आके, ठीक है आप बॉलिंग कर सकते हैं, बिकॉज उसे बैटिंग करने मिल जाएगा। आपके साथ हुआ होगा, मुस्कुराहट तो थोड़ी सी आई होगी चेहरे पर, है ना। किए गए होंगे ना अपने लंच बॉक्स भी शेयर अपने दोस्तों के साथ, साइकिलिंग की रेस, या फिर गर्मियों में कभी कभी या कभी ना ख़त्म होने वाली जो शामों में ये दोस्ती बनी थी, वो दोस्ती आज भी कायम है। ये नोटिफिकेशन नहीं है, 90s के जो दशक में हमें ऐसी यादें मिली हैं जिन्हें हम हमेशा संजो कर रखेंगे। वैसे फॉलोअर्स से भरी इस दुनिया में दुआ करते हैं कि उम्मीद है आपको हमेशा ऐसे दोस्त मिले जो सच में आपके साथ खड़े हों, चाहे अच्छा हो वक्त या बुरा। इनफैक्ट दोस्त वो है ना जो कहता है कि बुरा वक्त मेरे होते हुए आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये भी एक कमाल है, अपना एक अंदाज है। चलिए ये बातों से जुड़ी और भी बातें आप अपने जो कुछ किस्से हैं शेयर कर सकते हैं 8657661071 पर। कीप इट शॉर्ट और मैं ज़रूर उसका जिक्र करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। ये फिल्म अगर आपने देखी होगी, बहुत कमाल की फिल्म, बहुत कमाल परफॉर्मेंस और साथ ही साथ थोड़ा अतरंगी सा गाना, ये आपके लिए ओनली ऑन FM रेनबो, लव इज़ जिंदगी।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: क्या बात है, तेरी मेरी दोस्ती का आसमां जाने कहां, कोई हद नहीं है मतलब उसके आगे। बहुत कमाल, क्या कंपोजिशन, क्या गाना श्रेया और हिमेश की आवाज में, सुपर्ब। और मित्रता दिवस की शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि सच्ची दोस्ती ना धन देखती है, ना पद, ना समय और ना ही दूरी। सच्चा मित्र वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं, हृदय से जुड़ा होता है। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वैदेही आपका भी। और यहाँ पर जितने भी मैसेजेस मुझे आए हैं, शुभ लक्ष्मी, श्रेय रौत, पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेश। सो ये बात समझना, दोस्ती दोस्त बनाना चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं कि उसको हर बार आजमाना चाहिए। वो भी अगर आपको आजमाए तो कहीं आप बुरा ना मान जाए। ये तो मैंने अभी अभी इम्प्रॉम्प्ट था, मुझे लगा कि ऐसी बात है आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और दोस्त बनाना और दोस्त को बनाए रखना, ये बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, उसे वक्त देना भी ज़रूरी है। अगर उसकी खामोशी को आप समझ सकते हैं, उसके चिल्लाने में आप खामोश रह सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, या जानने की कोशिश करते हैं। दोस्ती होती है, दोस्ती निभाई जाती है, दोस्त अगर आप बने रहते हैं और उसे आजमाते नहीं। सबसे बुरी बात अगर कोई होती कि आप किसी को अपना दोस्त कहें और किसी और से मिल के उस दोस्त के बारे में कोई और बात करें, ये चीज़ अगर ना हो तो दोस्ती बहुत लंबे अरसे तक चलती है। वरना कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में यूनिवर्स कुछ बातों को इस तरह से ले आता है कि वो दोस्त को पता चल जाता है और फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, नाराज़ी हो जाती। जैसे कि कप में एक निशान अगर बढ़ जाए, टूट जाए, तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो निशान रह तो जाता है ना दोस्त। इसीलिए दोस्त बनाओ और दोस्ती निभाओ, बस इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं आप लोगों से। स्टे ट्यून्ड, आप लोगों के लिए और भी खूबसूरत से गाने यहीं एफएम रेनबो पर। लव यू जिंदगी, दिल से दिल तक।

5:49 और 48:49 हो चुके हैं। लव यू जिंदगी वसीम के साथ और फिकर नॉट नकाश देव नेगी अमित ये सब कह रहे हैं कि फिकर नॉट और बस दोस्ती निभाओ और इस दिन को ख़ास तौर पे मनाओ और पूरा साल ये कायम रहे। इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करें। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों तक कहना

चाह रहा था कि दूसरों से तो दोस्ती बहुत जरूरी है। वो गाना है ना, कहीं ना जा आज कहीं मत जा, और उसमें एक चौंतरा है जे कि उलझन तेरी मैं सब जानूं, तुझे तेरी ही तरह पहचानूं। वही होता है हमारा दोस्त जो हमें हमारी तरह पहचानता है, हम उसे कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद के जबरा फैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहले आप अपने दोस्त हैं या नहीं, या आप अपने आप को बहुत परेशान रखते हैं, बहुत ज़्यादा उलझाए रखते हैं। सुलझाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा गहरी सोच मिले जाते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक नुक्स निकाल लेते हैं, या हर वो चीज़ जो आपके हक में होती है उसे आप नकार देते हैं और टाल देते हैं। जो भी हो, आप अपने दोस्त हैं या नहीं पहले वो तलाश करिए, और अगर हाँ तो खुद से कहिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

बिल्कुल, बस एक और गाना और उसके बाद न्यूज़ होंगे। मैं मिलूंगा 6:15 बजे अंदाज़े में लेकर। लेकिन अगर सच में दोस्ती देखनी तो एक फिल्म आई थी ना एम एस धोनी द अनफॉरगेटेबल स्टोरी, तो उसको देखो। उसमें किस तरह से एम एस धोनी के दोस्तों ने उनका साथ निभाया और धोनी ने उन पर भरोसा किया और कहाँ से कहाँ बात गई। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बने रहिए मेरे साथ, आप लव जिंदगी को बस इस गाने के बाद मुकम्मल करेंगे आप और हम, और फिर न्यूज़ अपडेट उसके बाद अंदाज़े बयां, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 FM रेनबो जनाब।
2: छः बजकर 16 मिनट हो गए हैं। न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, और ये प्रोग्राम है अंदाज़े बयां, और मैं हूँ वसीम आप लोगों के साथ। रविवार की ये शाम और ये वीकेंड बस यूं कहें कि मुकम्मल होने पर है, और लेकिन वक्त अभी काफ़ी है और आप हमारे साथ, और कुछ अपडेट्स होंगे, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होंगे, तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिएगा, जो 6:45 से 7 के बीच में होगा, उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में। तो ये जो वक्त हमें मिला है, हम उसमें कुछ बेहतरीन गज़लें, नगमे, हर वो चीज़ सुन ले। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल शेयर की है राकेश माथुर ने। राकेश, तुम्हारी तरफ मैं नज़र कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। किताब दिल का कोई भी सफ़ा खाली नहीं होता, दोस्त वहाँ भी हाल पढ़ लेते हैं जहाँ कुछ लिखा ही नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, क्या ख्याल है। देखिए, मैं शायरी का एक अंदाज़ है, दोस्त हम लोग थोड़ा बहुत ऑब्वियस है कि दोस्ती है तो हर कोई दोस्त की तारीफ, दोस्त ऐसा, दोस्त ये हर भी चीज़। लेकिन मैंने कुछ एक तंजिया तौर पे, एक सरकास्टिक वे में जो गज़लें लिखी गई हैं, जिन्हें कहा गया है, पढ़ा गया है, सुनाया गया है ना, वो भी एक नज़रिया है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, दिन और रात, है ना, सूरज और चांद की अगर बात करें। तो ऐसी ही दो गज़लें आप ज़रूर ने सुनिएगा और फिर लौट कर आइए, फिर मिजाज ज़रूर बदलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये दो सुनिएगा, और ठीक है, लेकिन ये भी एक नज़रिया है और उसकी भी कदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदाज़े में यहाँ पे आप हैं वसीम के साथ, दिल से ही दिल तक।

0: धन देना चाहता।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स.
2: 6:31 हो चुके हैं और अंदाज़ बयां चल रहा है. उम्मीद है कि ये जो एक नज़रिया था जो शायरी का, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया और आप लोगों ने उसकी बखूबी वाहवाही की. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और NM पाटिल, आपका भी शुक्रिया. और मैंने गम को दरवाजे से लौटाना चाहा, लेकिन वो खिड़की के ज़रिए ज़िंदगी में आ गया. मैंने गम को दरवाजे से लौटाना चाहा, लेकिन वो खिड़की के ज़रिए ज़िंदगी में आ गया. फिर एक रोज़ ढलती हुई शाम में चाय के साथ उससे बातें होने लगी. जब ये समझ आ गई कि ये जाने से रहे, तो फिर उसके साथ बैठकर मुस्कुराना, चाय के घूंट पी जाना. क्या बात है, कितना खूबसूरत है ना ये भी एक एहसास. फिलहाल चलिए मिजाज को थोड़ा सा बदलते हैं, अंदाज़-ए-बयां में एक अंदाज़ और. आप लोग सुनिए और बने रहिए मेरे साथ, दिल से दिल तक.

आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 FM रेनबो जनाब।

0: अंदाज़े बयां को करते हैं हम मुकम्मल इसके साथ, और ऑफकोर्स इसलिए कि अभी आप सुनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एपिसोड 4 और 7 बजे होने वाले समाचार, उसके बाद 7:10 हम मिलेंगे आपके साथ हम तुम लेकर। तो बने रहिए FM रेनबो पर, जो है म्यूजिकली दिल से दिल तक।
1: We bring you a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment.

between employer and employer, disputes between employer and employee, disputes between worker and worker, disputes between trade unions as well. So this particular aspect has been taken care of in the Industrial Relations Code. Industrial Relations Code, the first mechanism which have been given the statutory backing, it is the recognition of negotiating union and negotiating council. Everywhere you will find the trade unions, everywhere you will find disputes, and there are some differences between the trade unions, workers, as well as with the employer. So now this recognition will give you the platform where they can, you know, bargain on the workers' interest with the employer. So this platform will give you transparency, and in negotiating union, the election will be held by the employer, and then only the negotiating union will be recognized. So that is also one the democratic way. And negotiating councils, where it happens that you will not get the 51%, because the criteria for negotiating union is 51%. So sometimes it happens you will not get 51%. So then another concept has also devised. What negotiating council means? If you have get 20%, then you will have a one member in the council as well. So likewise, we can have 5 members in that particular council. So by involving all trade unions in that particular industry, so that all demands of the workers can be put forth before the employer. So this is one of the important reforms which the government has done. First question comes into the mind of the worker that, okay, I got so many provisions in the various courts, where I will go? If some dispute is there, if some problem is there, then where I will go? So in this particular code, we have provisioned the grievance redressal committee, and it is mandatory if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representatives from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, you know, it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क्स कमेटी भी बनाई जाएगी, और उस वर्क्स कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज़ को वो एड्रेस करे. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर को बनानी है, और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं, तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल

0: प्योर हो जाए सेटलमेंट। अब काउंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है और वो सीधे जा सकता है। कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है। सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है, सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए।
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो कर्मचारी जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal और इसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2-member tribunal है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होएंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज़ को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, SI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPF और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीजें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करें। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेच्युटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है, बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे थे। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: अभी आप सुन रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एपिसोड 4। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार ठीक 7 बजे, उसके बाद 7:10 पर हम लौट कर आएंगे प्रोग्राम हम तुम पर, इस बार आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर, जहां पर आप लोगों की सारी रिक्वेस्ट्स होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ 107.1 MHz FM रेनबो पर।
4: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। 7:10 और 54:55 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम हम तुम शुरू हो गया क्योंकि 7:30 बजे एक और

आप प्रोग्राम जरूर सुनेंगे जो चलता रहेगा बिल्कुल 8 बजे तक। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आप लोगों की रिक्वेस्ट का सिलसिला ये रहा प्रकाश, तुमने जो रिक्वेस्ट की थी अब मैं सुना देता हूँ। एक और रिक्वेस्ट है, तेरा यार हूँ मैं फ्रॉम सोनू इज द फिल्म का टाइटल। अब मैं बोलता चलूँगा तो गाना खत्म हो जाएगा, तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते हैं ये गाने बिल्कुल।

गम है या खुशी है, तू मेरी ज़िंदगी है तू। रोचक कमाल है मनोज मंतशेर। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब इस गज़ल का एक और शेर है कि मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू मेरी ज़िंदगी है तू। कमाल है, बहुत खूबसूरत। वैसे एक ख्याल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी डायलॉग किसी भी फिल्म का है ना, कभी कभार बहुत यादगार बन जाता है और उस वक्त शायद इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, साल गुजरते हैं, ज़िंदगी आहिस्ते आहिस्ते जब आगे बढ़ने लगती है तो एहसास होता है कि हाँ वो बात जब कही गई थी।

अब जो आज तक सही है, ऐसा लगता है कि ये फिल्म दोस्ती के दिन के लिए एक बेहतरीन सौगात है। कुछ डायलॉग्स अमर रहते हैं ना, अभी मॉडल रहते हैं। मैं बताता हूँ वो डायलॉग, आप पहचानिए 8657661071 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। देख रहा हूँ वो जहाज़ जो ज़रा देर बाद दिखाई नहीं देगा, जानते हैं हम तीनों उस जहाज़ की तरह है जो आज नहीं तो कल अपनी मंजिल को ढूंढते निकल जाएंगे, और हो सकता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग हो। बताइएगा आखिर कौन सी फिल्म है ये। बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ आप लोगों से इन गानों के उस पार।

बिल्कुल सही, दिल चाहता है 7:25 और 9:10, क्या फिल्म, क्या कमाल की बात है ना। और वैसे अभी एक और गाना है जिसमें फिरोज, वो सॉन्ग जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हो ना, बहुत पुराना है, विजय अकोला से। थैंक यू सो मच प्रणव, मीना जी, आप सभी लोग बने रहिए, ये गाने के बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है 7:30, तो सुनते हैं ये आप लोगों की रिक्वेस्ट, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

0: आणि अभिप्रायांची वाट पाहत आहोत.
1: मंडळी तेव्हा ऐकत राहायचा आपला कार्यक्रम बरं का. तोपर्यंत
0: नमस्कार. श्रोते हो, आजच्या फार्म टू सिटी या कार्यक्रमात आपण धान्यांची ओळख, त्यांचं मूल्यवर्धन आणि त्याद्वारे शेतकरी बांधवांचं उत्पन्न कसं वाढू शकतं, तसंच ग्राहकांपर्यंत दर्जेदार आणि पोषक अन्न कसं पोहोचवलं जाऊ शकतं याबद्दल ऐकलं आणि त्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन केलं होतं डॉक्टर आय एल परदेशी सरांनी. आजच्या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव आणि ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती.
2: या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार.
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का.
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी. अरे पहले ऐसा नहीं था. पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी. माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी. पहली वाली बात कहाँ
4: पर हम तो सभी डाले हैं.
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं.
4: सच है
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं.
4: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा.
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती.

नमस्कार, आप सुन रहे थे किसान वाणी प्रोग्राम फार्म टू सिटी आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। और इसी के साथ प्रोग्राम हम तुम भी मुकम्मल होता है। शिल्पा आ चुकी हैं स्टूडियो में और वो रहने वाली हैं आप लोगों के साथ 8 बजे से। और आप लोग बने रहिएगा 107.1 FM रेनबो पर, जो है म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।

0: दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के

0: लिए तैयार रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
1: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक

0: रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और आपके साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू दोस्तों, आज की महफिल का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा लफ्ज है, ऐसा शब्द है जिसके बिना ये कायनात, ये दुनिया अधूरी है। आज हम बात करेंगे उम्मीद की, उस उम्मीद की जो जलते हुए दिए की तरह हमारे दिलों में रोशन रहती है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: बिल्कुल जी, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम है रंगे महफिल और आपके साथ मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। संजीव, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा कि उम्मीदों के दिए बुझने न देना कभी, ये वो रोशनी है जो तूफानों में भी रास्ता दिखाती है। ज़िंदगी कितनी भी इम्तहान ले मगर एक सुबह, एक नई सुबह हर रात के बाद आती है। तो आइए इसी उम्मीद के उजले सफ़र में सुनाते हैं ये एक और शानदार सी गज़ल आपको।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, वक्त हो गया है 11:26:27 की तरफ, मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है। हम आपसे हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल के माध्यम से। यह है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और सच भी तो है। अगर दिल में एक छोटी सी आस ना हो तो पतझड़ के बाद बहार का इंतज़ार कौन करेगा, है ना। लेकिन कई बार जब ये पतझड़ बहुत लंबा हो जाता है तब ये आस टूटने लगती है,

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: फिर वही फुर्सत के रात।
1: जी हाँ बिल्कुल, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, और ये रात दिन हम हमेशा तलाश करते हैं अपने भीतर, लेकिन ये दिन अपने बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं ये शांति कहीं ना कहीं मिलती है जब हम समझ जाते हैं कि इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं है, सुकून वही है जहाँ आप ठहरते हैं, है ना। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आपके साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, और एक और बहुत प्यारी सी गज़ल आपको सुना रहा हूँ मैं आशा भोसले जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत आशा ताई ने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया है, बस सुनिए और उतार लीजिए दिल में।

जहां रात भर का महिमा है अंधेरा, तो क्या आने वाली है सुबह, बस जरा सा सब्र तो करो। दिया उम्मीद का जलता रहे जो दिल में, हर सफर आसान होगा बस तुम यकीन तो करो। कल रात फिर सजेगी सजेगी महफिल, फिर होंगे लफ्ज और फिर होगा सुरों का कारवां। लेकिन अभी मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाजत। पर आकाशवाणी रेनबो पर सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। शुभ रात्रि, शब बखैर।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्ति युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना परपत्रों पर डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कैदियों के परिवारों को 7.5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा के महानदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम जीरो आवर शो का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशन।

0: रिलेशन
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। तब तक के लिए कहीं न जाइएगा, जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय

राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में कैदियों के परिवार को 7.5 लाख रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा में महानदी का जल स्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। केरलम में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रमंडल खेलों का देर रात समापन होगा। समापन समारोह में अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे अगले प्रोग्राम यानी सुहानी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और

संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेब्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत मंच स्थापित करना है। मौसम विभाग में आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रमंडल खेलों का देर रात समापन होगा। समापन समारोह में अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान।

यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: शुरू हुई है। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत

स्थापित करना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवीडी हाइड्रो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह, एथलीटों के अभिनंदन, संगीतमय प्रस्तुतियां और 2030 में शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से सौंपने के साथ संपन्न हो गया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: गाय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत मंच स्थापित करना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवीओ हाइड्रो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह, एथलीटों के अभिनंदन, संगीतमय प्रस्तुतियां,

और 2030 में शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से सौंपने के साथ ही संपन्न हो गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,

0: फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।